दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

आस्था से तिहार में शाओमी व रेडमी को लेटेस्ट फोन किनी एमआई स्पेस आईएमईआई नंबर टाइप करी व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस् र हर एक दिन 8 जनालाई रेडमी बड सिक्स प्ले हर एक हफ्ता 10 जनालाई रेडमी वॉच सिक्स एक्टिव अनि बम्पर मा 4 जना विजेतालाई थाईलैंड हॉलिडे यो योजना मंगसिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको शाओमी डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।